0: वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता के बड़चीरा रहाओ सब सुरती मिलो सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई।

जातो था। तुम करता सचियार मैडा साई, जातो पावै सोई थी सी, जातो देह सोई हम पाई रहा। सब तेरी तो सब नीते आया, जिसनु कृपा करे त्रिनाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़े आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जिय जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सदही आख बखाने। जिन हर सेवे आ तिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवरण कोए। तू कर कर वेख है जान सोए, जर नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

ते महादेव को कहत सदा सेवो निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध जिती बरणत भिन्न भिन्न तो हे तेती।

दोहरा। जब आए सो प्रभु को पयो जन्म तरा जग आई। अब मैं कथा सुन से पते सबू कहत सुनाई। काबा च दोहरा ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सुहाई। दोहरा

दोहरा कालपुर की देह मऊ कोटक बेसन महेशो कोटिंद्र ब्रह्मक तयोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत ने तो सुरग बास रगबर कर सगरी पुलिस में तो चौपाई जो ए कथा सुन अर्गा वै दुख पाप ते निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद आद छुसक न कोई समत सुतरा सास।

धरा नेत्र तुमके चरण तर स्तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रागवर कथा प्रसंग साधु असाधु जानो नहीं बास बांधे बादो ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

हम दिता हम चलाया हम खटिया हम चाया हम सचार कूड़ियार हम च पापन विचार हम

नानक जनते उपाय कै संभाले सबना जन करता करना किया चिंता भे करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिह जवारी स्वस्थ तिस तिस दिबाणी।

पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरिए साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास।

कुड़ सोना कुड़ रूपा कुड़ पहनन हार कुड़ काया कुड़ कपड़ कुड़ रुपया पार कुड़ मिया कुड़ बीबी खाप हो खार कुड़ कुड़ने होल।

0: जो किछ करना सो कर हया महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं सुर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत।

गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तर न जाय धोती टिका तैज माली तहन मलेशा खाई अंतर पूजा पड़ख दे बां संजम त्रुका पहाई

एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर